0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सम्पर्क नम्बर 9855068590।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंड में थपलो 7 मेगाहर्ज बाट मो बद्र प्रसाद साहब बाट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 9 तारीख श्रावण 24 गते आइतबार आज कामिक एकादशी व्रत धार्मिक महान भावहरूले आज कामिक एकादशीको व्रत गर्नुहोला अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।